0: अज मेरे बेटे की पहली बर्थडे पार्टी है, दिल खोल के खर्चा किया है।
1: बहुत बढ़िया यार, पर एक गल दस, तू अपने बच्चे की RESP करवाई है?
0: नहीं तो
1: भाई, RESP तुहाडे बच्चे की सुरक्षित भविष्य की चाबी है। अज ही ऑल काइंड इंश्योरेंस तो गुरजीत सूरी नू कॉल करके RESP करवा। इना कोल क्रिटिकल डिसेबिलिटी ते स्टूडेंट इंश्योरेंस दे बेस्ट प्लान।

0: डिसेबिलिटी इंश्योरेंस का होना बहुत जरूरी है. सो कॉल गुरजीत सूरी जिन्हें कोई प्लान विच स्टार्ट फ्रॉम ओनली $99.
1: स्टूडेंट्स लाइक खास $250,000 लाइफ इंश्योरेंस कवरेज प्लान सिर्फ $19 तो. फॉर सुपर वीजा विजिटर इंश्योरेंस DFSA RRSP and RESP कॉल गुरजीत सूरी एट 416-627-3111.

हेलो नमस्ते सलाम आदाब ते सत श्री अकाल की हाल चाल है मेरे फ्रेंड्स डोगरी रेडियो सुनने सारे का मता मता स्वागत है। मैं तुहाडी आरजे डोगरी की धी आखदे नवी की मेरा नाम है नेहा शर्मा। तो जो गल डोगरी की चलती है तो मैं सोचा डोगरी की गई गल करने तो डोगरी भाषा के बारे चुके मैं तुसें अच कुछ दसना है कुथों आई है भाषा कुथों निकली है भाषा।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं आ डोगरे दी धी नेहा तुंदे सारे आस्ते लेई आई आ डोगरे रेडियो ते अस गल करा दे डोगरी लैंग्वेज दी, डोगरी भाषा दी। जियां कि मैं तुसें दसा दी ही कि टाकरी लिपि दा निकली ही, पर जियां कि अज जम्मू दे बिच भी बहुत लोग हन जो अपनी भाषा की नहीं बोलते, पर मैं मन्नी आ कि जेड़ी डोगरी भाषा है वो साड़ी माँ है, ते हिंदी है वो साड़ी दादी है, ते माऊ थार माँ होनी चाहिए है, ते दादी थारे दादी होनी चाहिए है। पर फिर भी कुछ लोग ने जो बड़े चिकते ने, शर्मांदे ने, ते कई ते वो भी कैटेगरी है लोगों की जो आखते अगर डोगरी बोल के तो ग्राई सही हो गए। ठीक है, मैं समझनी हर भाषा का ज्ञान होना बड़ा ही जरूरी है, एक पर्सनल डिवलपमेंट आस्ते हर भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, पर अपनी जड़ें ही भुलाना केड़ी समझदारी है। अपनी जड़ें दा अपनी पुरानी जड़ी अस जितों आए ने जो साड़ी ओरिजिनल भाषा है वह भुलाना भी कोई समझदारी तो नहीं है, वह भी असं ज्ञान होना चाहिए उसका भी, तो असं अपने बच्चों की भी वह सिखानी चाहिए है। तो सुनो अगला गीत, तो मैं करनी हाँ फिर अगली बार वो बाद।

मैं तुम्हें तो स्वागत है तुंदा डोगरी रेडियो च। मैं आज ते आज तुंदी डोगरी रेडियो दी नेहा। ते मैं जियां तुसीं दस्या कि टाकरी लिपि दा निकली दी है, पर बड़े सारे लोग ना जिन्हें कि टाकरी दा ज्ञान गे नहीं रहा है, विलुप्त होई है, जियां कि साडी भाषा विलुप्त होआ करदी है। ते अजकल सधारण तौर पर इसी देवनागरी लिपि च लिखिया जांदा है। ते ये जिहड़ी है इहदा सॉलिड बेस है इस भाषा दा, उह संस्कृत बेस्ड है। आई भी कई वर्ड हन जो सिमिलर हन संस्कृत दे ते डोगरी दे, या ते मीनिंग सेम हो जांदा हुंदा या फिर वो फोनेटिक थोड़ा जिहा चेंज हो जांदे ने। जियां कि संस्कृत दा वर्ड तुस लाओ यात्रा, जो कि डोगरी च आखा जांदा है यात्रा। अगर संस्कृत दा वर्ड तुस चुको हसा, ते ये डोगरी च हो जांदा है आसा। ते डोगरी भाषा सिर्फ डुग्गर प्रदेश च ही नहीं बोली जांदी है, ये पंजाब के कुछ इलाके च भी बोली जाती है, जियां कि पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, उवां गे हिमाचल प्रदेश च भी बोली जाती है। डोगरी भाषा ते हिमाचली भाषा बहुत ही सिमिलर है, पर हिमाचल दे आई भी कई जगह न जिहदे च प्योर डोगरी बोली जाती है। ते डोगरी भाषा एक इकली भाषा नहीं है जिहड़ी जम्मू प्रदेश च बोली जाती है, इहदे कन्ने होर भी बड़ी पहाड़ी भाषा न जो बोली जांदियां। तो सुनो अगला गीत, ते फिर मैं सुनानी हां तुसीं बाकी भाषाएं दे बारे।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, अज गल करा दे डोगरी भाषा दी। ते जियां कि संस्कृत बेस हुंदा है बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस दा, उआं गै डोगरी भी बेस है बहुत सारी और पहाड़ी भाषाएं दा। डुग्गर प्रदेश च और भी बड़ी सारी पहाड़ी भाषा बोली जांदियां ने डोगरी दे अलावा, जियां कि कांगड़ी, सिरमुरी, रामबनी, भद्रवाही, गोजरी, पोंगली, ये नहीं और बड़ी पहाड़ी भाषा जो इस प्रदेश च बोली जांदियां ने। ते मैं ये रिक्वेस्ट करनी है श्रोता गणे कि जो जो भी सुना दे वो जेड़ी भी उंदी अपनी मातृभाषा है, जो भी उंदी जड़ां ने, अपने आने वाली पीढ़ी की उंदे कोला अवगत कराना बहुत जरूरी है, ताकि जियां तुस नहीं भुले अब तुंदी पीढ़ी भी अपनी जड़ें की नहीं भुले, ते उन्हें अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ते उम्मीद ही इजाजत, मैं फिर परती आगे जंदे आस्ते एक नवी कहानी लईए, एक नवा ज्ञान लईए मेरे डुग्गर प्रदेश का। टिल

0: टीका टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दियां ते मसलियां ते
1: तिरछी नजर रवेगी, कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: छह पर लगेगी नवे पुराने गीतां दी
1: बातां होणगियां सभ्याचार ते अमीर विरसे दियां।
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार।
1: बिजनेस दी प्रमोशन ली आज ही कॉल करो 416-917-7073 ते 416-917-7773।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 7 4 2 2 3 6 7 7 2 2 3 लाइसेंस नंबर 10394।
1: मम्मी पापा दे वीजे री सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है, ते पांटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
2: शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
3: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
4: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियों बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
3: 416-917-7763 416-917-7763। Life insurance, visitor insurance, super visa insurance, critical illness, disability insurance, RESP, travel insurance, convert expensive mortgage insurance to term insurance.

0: पहुंचो 30 रामलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600।
1: सीजन आ चुके है, पुराने अकाउंटेंट नाल खुश नहीं हो या टैक्स दे विच थोड़ियां बचत किथे हुई हैं, केड़े केड़े लिमिट्स तुहाडे लई सरकार ने सेट किते हन, लोन मिल सकदे ने या किते भी थोड़ी कंपनी दी शेप किस तरह होनी चाहीदी है। पंजाब टैक्स सॉल्यूशन दे जगजीत साचा जी मिसिसागा ते कैम्ब्रिज दीआं दो लोकेशन तों नवीआं फाइल्स जिथे लै रहे ने उत्थे तुहानूं सुचेत करदे हन आउण वाले समें लई। टैक्स दीआं सर्विसिस लई पंजाब टैक्स सॉल्यूशन 416-720-3642 416-720-3642 पंजाब टैक्स सॉल्यूशन।
2: कि तुसी भी इन्वेस्टमेंट दे इस दौर च प्रॉपर्टी च इन्वेस्ट करना चाहुंदे हो, कि तुसी भी प्रॉफिटेबल आउटकम ले प्रॉपर्टी लब रहे हो, फिर फेयर डी रियल्टी रिप्रेजेंट्स आउटस्टैंडिंग फार्म हाउस 28 एकर लैंड विद टू रोड फ्रंटेजेस, डबल कार गराज, ग्रीन हाउस एंड वर्कशॉप, यही नहीं 407-418 हाईवे तो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी ते। फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स कॉल द बेस्ट टीम फेयर डी रियल्टी ब्रोकर ऑफ रैकेट हरदीप पंदेर एंड 905-671-2000।
3: My favorite, मेरी पहली पसंद,
4: I love it।
5: मैं तो सवेरे सुने बिना रह ही नहीं सकती।
3: हम सबकी पसंद
6: रेडियो आवाज,
3: एवरी मॉर्निंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9 to 10 एंड सैटरडे 10 to 1 ऑन AM 530, नॉन स्टॉप कॉल्स, नॉन स्टॉप टॉक्स। प्रमोट योर बिजनेस विद अस, कॉन्टैक्ट 416-518-3200।
7: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
8: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं।
9: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
10: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
11: रेडियो आवाज,
12: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।
1: घर नूं पेंट करवाउणा हुंदा है, कन्फ्यूज हो जांदे हो, बहुत सारे पेंटर्स ते पेंटिंग कंपनी दे नंबर, पर तुसी रियल्टी पेंटिंग नूं क्यों नहीं चुनोगे? फायर स्टेशन, 5-स्टार होटल्स, बिल्डर दे कस्टम कार्स या सरकारी इमारतां नूं पेंट कर चुके हन, उत्थे तुहाडे घर नूं 24 घंटिआं दे अंदर अंदर पेंट कर दिंदे हन। इन्हां दा रेट इन्हां दी क्वालिटी नूं कोई भी मैच नहीं कर सकदा। 7 साल दे कीते हुए काम दी गारंटी होवेगी। फ्री एस्टीमेट लई सुखमन नूं कॉल कर सकदे हो 416-816-8401 416-816-8401।
13: रुपिंदर गरेवाल लॉ ऑफिस, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, विल बनाउण लई, फैमिली लॉ जां फिर पावर ऑफ अटॉर्नी, ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ। कम्युनिटी दा जानिया पहचानिया नाम रुपिंदर गरेवाल, बैरिस्टर, सॉलिसिटर एंड नोटरी पब्लिक, लोकेटेड एट चिंक्यूजी एंड बवेट। फॉर ऑल सर्विसेज कॉल 905-497-1211, 905-497-1211।
14: 2 ब्याह कीते इंडिया च।
15: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
16: ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੱਚ ਮੰਨੋ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੇਸਟ ਢਾਬੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਘਰ ਵਰਗੀ।
1: 50 Sunnyvale Gate, Brampton, Mountainish and Bovet, the intersection, ya visit karo www.tavakitchen.ca, 905-790-1699, tawakitchen.ca।
17: याद है मेनू जदों मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी, किन्नी परेशान हो गई सी मैं। इंश्योरेंस नाल डील करना, गड्डी पेंट कराना, किन्ने झंझट। थैंक्स करदी हां मैं स्पीडएक्स ऑटो कलिजन वालियां दा, जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील कीता, रेंटल कार भी दित्ती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दित्ता। ते तुसी भी पहुंचो स्पीडएक्स ऑटो कलिजन, 181 रदरफोर्ड रोड साउथ, यूनिट 11, ते या कॉल करो 416-277-9221, 416-277-9221।
18: You are listening to your favorite radio show, Radio Awaz, The Voice, Zindabad, Zindabad. For advertising, please call 416-518-3200.

0: 8550 ਟੋਰਗਰਮ ਰੋਡ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 1 905-799-8877 ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ ਡੋਟ ਸੀ ਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ
1: चार लोकेशन ने मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी
2: जी हाँ कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रका दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड किए जाते ने बतेरी जानकारी ले कॉल करो 905-874-9898
3: मैं नवा घर लिया है तेनू पता है प्रॉपर्टी इतनी महंगी है नाले मैं एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली है एक बाई मैं बेसमेंट भी बनाई है ब्रम्पटन वाले घर दी नाले मैं सोचता हूँ वॉशर एंड ड्रायर भी चेंज कर ही दईए हुण समझ नहीं आ रहा अप्लायंसेस कित्थों लईए
4: हो जी इहदे च समझण वाली केड़ी गल है सारे कम वाले इक्को जगह चलो मिसेस अगर स्टील ते अप्लायंस जंक्शन ते इहदे प्राइस ते सर्विस नु कोई बीट नहीं कर सकदा तुसी 6 मंथ तक दी पेमेंट भी बनवा सकदे हो सारे ब्रांड्स दी ऑथराइज्ड डीलर्स भी ने मिसेस अगर Appliance Junction. Call 905-450-0054 905-450-0054

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल्ड रोड Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900
1: आप पंजाबी आ गए
2: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
3: आप दे नाल शेयर करेंगे जी मोबिल गैस स्टेशन जरा के नियाग्रा फॉल चावे 2020 बिल्ड हो डबल वाल फाइबर ग्लास टैंक दे नाल ही का जे एच स्टोर बहुत अच्छा है तीन पंप ही गए कैनोपी लगी हुई है फेबुलस लोकेशन ये प्राइम लोकेशन इन नियाग्रा फॉल सिटी और एहो जिहा मौका तुसी अपने हथों जान नहीं देना ये वास्ते कॉल करनी होगी 6479884449 हसीब शेख 6479884449 सेवा का मौका जरूर देना जी।

किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। 18 साल तो हो गए रेडियो कर दे, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। 18 साल तक नजर आई नहीं हो, पता नहीं होने कितों नजर आज।

0: वाह भाई वाह, इंतजार आज भी है। कैसे गीत हैं, कैसे गीत बन गए हैं, इधर गीत कितने दोबारा बनने हैं, कमाल हो गई है। ढिल्लो साहब होर दसो की कहना चाहोगे?
1: मैं गल कहना चाहूँगा कि भी कई बार ना चीज़ा प्रोफेसनल सलाह लैन के नाल बहुत चीज़ों का फर्क पै जाता।
0: जी जी,
1: एक स्टेट प्लैनिंग करने की बहुत जरूरी होंगी है।
0: हाँ जी,
1: स्टेट प्लैनिंग करने की यह लोड़ पैंदी है क्योंकि आप कई बार ना अपनी प्लैनिंग हो सकता गलत होवे, अपना तरीके गलत होंगे कई बार, पर जे तुसी स्टेट प्लैनिंग डिस्कस कर लैंदे फिर पता लग जाता कि

0: health insurance specialist from Top Choice Insurance Agency.
1: Rev Singh, Canadian Jumper, sada apna realtor, commercial ya residential property waste, puri history kad ke property di puri khoj karan to baad fir tuhadi property list karde han Rev Singh, Home Life Silver City de expert writer Rev Singh. Rev Singh di tikhi nazar tuhadi property vechna de khareedan vich tuhadi help kar sakdi hai. Nave project de mahir ate investment property de expert Rev Singh nu phone karo 647-740-9600 647-740-9600 ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੈਲਟਰ ਰੈਵ ਸਿੰਘ
2: ਅਨਬੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ
3: ਕਾਲ ਕਰੋ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ 647-300-3100
2: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
4: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
5: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 9054608888 दैट्स 9054608888
4: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस
6: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m.

0: काउंटिंग नहीं ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
1: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
0: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 गोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905 450 2828 905 450 2828

0: होलसेल क्लब विच कीमतां घट हो रही हैं।
1: पहला नालों में कट।
0: आ वेखो सैन पेलोग्रिनो दी चुड़िया हुई किस्मा 6x330 ml सिर्फ $5.99 च।
1: ये तो होर भी कट है।
0: साडे बेसमेंट दे वाईफाई सिग्नल तो भी कट।
1: ओए तू कित्थे जा रही है?
0: अपने बिजनेस लई पैसे बचाउन। तुहाडे बिजनेस लई पैसे बचाउना साडा बिजनेस है। इस लई असीं कई आइटम दी कीमतां घट कर रहे हां। ते कोई फीस नहीं। होर जानकारी लई wholesaleclub.ca वेखो।
2: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
7: संसार दे कोने कोने विच वसदे पंजाबियों तक विरसे दी खुशबू पहुंचाउंदा ए है वतनों दूर रेडियो। दिस इज वतनों दूर रेडियो।
8: वतनों दूर रेडियो विच तुहाडा सारयां दा दोस्त सुखी निजर तुहाडा सारयां दा सत्कार करदा है ते सिजदा करदा है कनेडा विच मेहनत करके तरक्की कर रहे सारे परिवारां दा जिन्हां ने वतन तो दूर आके इत्थे खुशहाली दे महल बनाए ने ते वतनों दूर सिजदा करदा उन्हां सारे सिरड़ी इंसानां दा जिन्हां ने इस वतन दीआं तरक्कियां दीआं कहानियां लिखियां ने। वतनों दूर रेडियो सिर चकाउंदा है उन्हां सारे दोस्तां नूं जिन्हां अपनी कामयाबी दे नाल इत्थों दी धरती ते इत्थों दे लोकां नूं दस्सिया है कि साडी शान वक्री। वतनों दूर हुण कैनेडा विच वसदे पंजाबियां लई पंजाबी संगीत पंजाबी जवान ते पंजाबी विरसे दी खुशबू पहचान लई लेके आया है वतनों दूर रेडियो।
7: दिस इज वतनों दूर रेडियो।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बम रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper tusi cheap flight tickets si pal de vichu Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne ja tusi visa services di pal de vichu puri family vacation upar jaan di soch rahe ne jithe tanu all inclusive vacation packages bhi milde ne pahunchna maji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection over.

0: एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
2: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर लै गया। आटा दाल चावल वाली सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड, 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 गिलिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
3: వేమలా విలేజ్ లా విలేజ్ పడది పీయొచ్చ జంట పడదా, వేమలా విలేజ్ లా విలేజ్, వేమలా విలేజ్ లా విలేజ్ పడది। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਤਨੋ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਖੀ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।

0: One-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: यारों के साथ टशन या फैमिली के साथ करना हो जशन, ढाबा ऑन द फॉल्स आए, टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
3: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाम, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन नायग्रा फॉल्स। LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स, फ्री पार्किंग। विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नायग्रा फॉल्स, कॉल 905-358-0864
2: 905-358-0864 Dhaba on the Falls.

0: फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट
1: फोर एंड अवनीजर द इंटरसेक्शन पे गुरुद्वारे बाय प्लाजा के बीच सिल्वर हट
0: 6473393521
1: 6473395121 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन
0: सिल्वर हट
2: वे जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले लई
3: लड़ियां होन या चार बिजनेस लई जाना होवे या फिर घूमन लई इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस लई कांटेक्ट करो एयर टिकट्स इंश्योरेंस पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओवी रीजनेबल प्राइसेस ते स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा कॉल 9056781200
4: आप पंजाबी आ गए

0: Indian brings you all simply delicious deals. Buy one, get one free every day. Sure 10 to sham 7 baje tak on dine in and take outs. Maza lavo Sunday no paratha plate. Monday manpasand kulcha plate. Tuesday chana bhatura. Wednesday lajawab veg thali. Thursday yummy haka thali. Friday maza lavo saag makki di roti da. Hey, yummy deals are simply Indian. This sariya hi locations stay. Dining, take out and catering also available. Call at 905-794-8111.
1: ओ हीट वेव आ गई
2: की गल एनी जल्दी
1: हां जी ते पता है इसका की मतलब
2: सनस्क्रीन हाइड्रेशन एनका
1: ते सेविंग्स भी क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है होने लबो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99 ओहो उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने
2: ओ भाई इतना गर्मा गर्म डील है
1: कोई मेंबरशिप फी नहीं और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ
3: होलसेल क्लब होल लॉट ऑफ वैल्यू
4: Swing in the golf season with AM 530 at the MCPA 33rd Annual Golf Tournament, June 10th at Piper's Heath Golf Club. Sponsored by Betty Systems, Avenue Building Group, Liuna Local 183, Liuna Central and Eastern Canada, LSJ Services, and AM 530. Registration fee support community services and includes 18 holes of golf, power cart, prizes, lunch, and dinner. MCPA, meaningful interactions create benevolent acts. Register now or donate at micba.com.

0: कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161।
2: टीम सिद्धू लेके आए ने नियाग्रा फॉल्स शहर दे विच नमे ट्रेडिशनल टाउन हाउसेस विथ डबल कार गराज फोर कार पार्किंग ते बिल्डर दे वल्लों फ्री फिनिश बेसमेंट एक्स्ट्रा रेंटल इनकम डिले प्राइस 5,25,000 525,000 ए ट्रेडिशनल टू स्टोरी टाउन्स एक प्राइम नियाग्रा फॉल्स लोकेशन ते तैयार हो रहे ने क्लिफ्टन हिल ते एक्चुअल नियाग्रा फॉल्स तो तकरीबन 5 किलोमीटर दूर क्लोजिंग स्प्रिंग 2027 2027 दे विच एह ट्रेडिशनल टू स्टोरी टाउन्स 1750 स्क्वायर फुट तो लेके 1800 स्क्वायर फुट तक तैयार हो रहे ने 3 to 5 bedrooms 3.5 to 4.5 bathrooms फ्री फिनिश बेसमेंट फ्रॉम द बिल्डर डबल कार गराज टोटल 4 गड्डिया दी पार्किंग है फ्री 5 अप्लायंस पैकेज free AC, free assignment clause, free upgraded quartz countertops, zero development charges. Price 5,25,000 525,000 extended deposit hai total 60,000 deposit kishtan de vich pay karna hai aaj hi team Sidhu nu call karo 416-302-0016 416-302-0016 416-302-0016 team Sidhu
3: ਡਰਾਈਵਰੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ
4: ਅੱਜ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ।